प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रास पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिज को आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर कल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

कै जन्म बिरथा जातो, रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख न हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है काहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चिटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशान, घट घट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड़ काश भेद ना जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हवाय बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।
जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शवाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाहियां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सुवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो वे सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दियां ए वडे आईया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वसत तजी नह जाई नित नित रख उरथारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पांजवा तेरा कीता।

देवा तन मन थी वै हरिया। पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोय नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे पाउ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वत दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के। महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारन गुर की पैरी पाए काज सुवारन।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेको नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दे दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खा

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बेखो खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की रत की।

हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाल हैं गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली।

हर हर कथा निराली रहौ, हर के संत सुनहु जन पाई, गुर सेव हो बेग बेगाली, सतगुर से

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जह महाप्यान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चल जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माही उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना पर हर का नाम जपत निस्तर अनिक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आघावे जिह मार्ग एहो जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनिक बिघन जह आए संगार हर का नाम तत्काल उदार अनिक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कब हो न तोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपोह मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहां संग तोसा जिह पैंड महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महाप्यान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर ना भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नहीं वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर ना जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे और जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्वस संत प्रताप दुरत सब नस संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवर ना होए

नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास करम त्रम किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम कर बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपी सर थीवे अगन माही हुमत प्राण कनिक असु हैवर भूम दान न्योली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी होम मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुट्टे गर्भ गुमान ना मनते हुट्टे सोच कर दिनस अर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू ना बिख्या टरे जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतित बहुमूच बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै अनेक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिझै छूट सुनाहि ऊभ पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोला सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को आपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरा साध संग एह हो मैं छोरा जे को जन्म मरण ते डरा साध जना की सरनी परा जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सूगनीय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन काट काट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्तन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव हो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर ना जानस कोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एआनिया सो प्रभ सदा समाल जिनकी आतिस चीत रख नानक निभहि नाल अष्टपदी
रमैया के गुण चित पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूध बिरध पया ऊपर साक सैन मुख अपयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझ बख्श लेहो तो नानक।

करी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरत आनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा मन माथा। उस ते चौगुन कर निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिन सह ओह मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहे हो तह अंध अंधार।

ਬਟਾਉ ਸਿਉਂ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨਿਹ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੇ ਕਹੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਏ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇਜਨ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸਿਓ, ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਨੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਹੈ ਮਾਨੈ। ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵ ਹੈ, ਤਿਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵਲਾਵ ਹੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਹਿ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਹਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ, ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਈ। ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ,
तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जिह प्रसाद सुनह कर्ण नाद जिह प्रसाद पेखह पिसमाद जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पाव है जिह प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागोह गुर प्रसाद नानक मन जागोह जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मन हो बिसार जिह प्रसाद तेरा परताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस हजान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपहु कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगह हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब कीरेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस स्यों नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाना साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध कै संग ना कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस तन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्व थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग ईहा ऊहा सुहेला साध संग मिचरत हर मेला जो इच्छा सोही जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग ना बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग नामन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै तब मीठा साधु कै संग काट काट डीठा साध संग पय आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जेता सुन है तेता बखियान है साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही पार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਤਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸੁਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਸਲੋਕ ਉਰ ਤਹਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ, ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਚੈ, ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ,
भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन्ते बिंस सगला परम कर पूज सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोव तिस भगवती की मत ऊतम होव भगवंत की टहल कर नित नीत मन तन अर्प बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसाव नानक ऐसा भगवती भगवंत को पाव सो पंडित जो मन पर बोध राम नाम आत्म है सोधा राम नाम सार रस पीव उस पंडित का उपदेश जग जीव हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जोन ना आवे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सूखम मह जान असूल चहु वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना मह जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन खोए हर कृपा अंतर उर तार पस प्रेत मुगत पाथर को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाई है धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वर्ता ईसाई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राख तैसा तिन नाओ आपे करन करा उनजोग प्रभ पावे सोई फुन होग पसरियो आप होए अनत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलोक उस्तत कर हैं अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पए तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सुर होते कई कोट आत्म ध्यान तार हैं कई कोट कब का विचार हैं कई कोट नवतन नाम त्याव हैं नानक करते का अंत न पाव हैं कई कोट पए अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को हिर हैं कई कोट पर दुख न कर हैं कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरा सब हूते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बह जोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कालह थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट पए बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी
कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहु पात प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत ना जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार हैं एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव हैं अमर पय सद सद ही जीव हैं कई कोट नाम गुण गाव हैं आत्म रस सुख सहज समाव हैं अपने जन को सास सास मारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करुण करुण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करन करावन करने जोग जो तिस पावे सोई हो खिन महताप उथप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड़ियाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ पावे मानुक गत पावे प्रभ पावे ता पात्र तरावे प्रभ पावे बिन सासे राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाख है प्रभ पावे ता पतित उधार आप करे अपन बीचार दुहा सिरिया का आप स्वामी खेल विगस अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुक ते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिखिया मह रचै जे जानत अपन आप बचै पर में पूला दह बिस्तावै निमक महे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु ना आवै तिस सतकाल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गन जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊभ आकाश प्याल कबहू बेता ब्रह्म बीचार नानक आप मिलावनहार कबहू नृत्य करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त मह आवै कबहू पला पला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुरप्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनिक जोन परमै परमिया नाना रूप ज्यो सौगी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बोहर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बस है पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पति होवत स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरै बोह जोन प्रमावे तन भूम का जो करै गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान
कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तनवंता होए करगर बावे तृण समान कछ संग न जावे बहुलस कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे ना बदाय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म कर हो तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह कहो कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानकता की निर्मल सोए जब लग जाना मुझ दे कछ होए तब इसको सुख ना ही खोए जब यह जाना मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तारे कुबेरी मीत तब लग निश्चल ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूट गुर प्रसाद नानक हो छूट सहस खट्टे लख कोट तावे त्रिपत ना आवे माया पाचै पावे अनिक भोग बिख्या के कर न त्रिपतावे खप खप मर बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्टि करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किस कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबहु कै संग बुझ देख कर विवेक आप है एक आप है अनेक मर न बिन सह आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझ आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनू अपन विस्तार सब कछ उसका हो करना हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर ये कैसोए अपने चलत आप करने हार को तक कर रंग अपार मन मह आप मन अपनी माहि नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मध्य किने बिरला चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेई बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन

अष्टपदी। संत के दुखन और जा कटाए, संत के दुखन जमते नहीं छुटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक मह पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हत्ते को रख न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक की तरह। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा मह जलै, संत के दुखन सब को छलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाय। संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावै तां वे पीगत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तिहीन, संत का निंदक दुखी आर दीन। संत के निंदक कौ सर्व रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी। संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नहीं ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दुखी अदबीस ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान भरमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावै ता लए उबार। संत का दुखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे केला, ज्यो बुआर तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक ज्योत पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख ना तृष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया कित ना मिटै कोई, नानक जान सच्चा सोए। सब कट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, तिसह त्याव सास गिरा। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक। तजो हो सिया नप सुरजन हो, सिमरहो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम भौ जाय। अष्टपदी। मानुख की टेक पृथ्वी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रह अघाए, बहुर न तृष्णा लाग आए। मारे रखै एको आप, मानु कै किछ नाही हाथ। तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागै कोए। उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनहु पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, दरगह नानक ऊजल मथा। बड़ पागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो कर है बीचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोल है हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाना, तुत की ओ सो जी जाना। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुझ, तिसकी जानो तृष्णा बुझ।
साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग तेहो हर जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी खटिया जम की पासा। पार ब्रह्म की जिस मन पूख, नानक तिसह न लाग है दुख। जिस को हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेव कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नह किछ जन्म नह किछ मर, आपन चलित आप ही कर। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत रस्थाप उथाप। अविनाशी नाही किछ खंड, तारण तार रहे ब्रह्मांड। अलख अपे उपरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावन, सगल संसार उधरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख बिसारन। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लाग है, जिसनों कृपा करह बटपाग है। नाम जपत पाव है विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किस कर सो प्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाय होवे सो होए, करण हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहे सुमाए, होए सुख निधान उन्हों बन आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर, प्रभ बिरथा जानन हार। जाकै सिमरन उधरिया, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जी आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। अरे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल घट सो है। तनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे। जे को होए बह दातार, तिस देन हार जान गावार। जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। ज्यों मंदर को थम है थमन, त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू ते सह चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिर है अजान। कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद सेती घर जाहे। जिस वकर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय मह तोल। लाल खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर गह सोए। एहो वापार विरला वापार, नानक ता कह सद बलिहार। चरण साध के तोए तोए पियो, अरप साध को अपना जियो। साध की तूर करो इस नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है। अनेक बिघन ते साधु राख है, हर गुण गाए अमृत रस चाख है। ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक कौ जीवाल अनहार, भूखे कौ देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका हो करना जोग, तिस बिन दूसर होवा ना होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल ए करणी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया।
जाके मन गुर की परती तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिय तिहु लोए जाके हृदय को होए सच करुणी सच ता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्टि सच आकार सच वर्ता सच पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप नरेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाय नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अवनासी प्रभ मन महराख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नहीं किछ पोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कह मने हो अनराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनी है कर ताक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जन पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावह से तेह गुण मह जाकु परमाए जन्म मरे फिर आवह जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक करह एक रंग नाना विदकीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलित करे खिन माही पूरहे पूरन सब ठाए नाना विद करमंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगला आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम के संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपना नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी पाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब फली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जान अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करण हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जान किया नानक जो तिस भावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्मात जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कह बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ वक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपो होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न ना कहना जाई
बुझे बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पूजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रति ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राख निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु तार नानक सो सेवक सास सास मार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लाख प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल रख पसम कर लस्कर कोट लाख जिसका सास ना काढ़त आपता को रखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पाओ तिसके कर्तव्य बिरथे जात मार न रख अवर न कोए सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एह मन तन त्रपी है नाम रतंजर गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट आया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेह बादिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सुन रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ सहजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पाव है तिसके दर्स सब पाप मिटाव है अवर से अनप सगली चाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख

सरस्वती जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनू सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसर जे अगन मह रख गुरु प्रसाद को बिरला लख सो क्यों बिसर जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपूरे तत यह बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपहो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जप हो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर इही सुआओ नेत्र हो पेख दरस सुख होए मन बिकसै साध चरण तोए

मन सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए। एक निमुख हर के गुण गायन राज भोग बढ़ियाई। हर के नाम की कथा मन पाई। बहु पूजन का पर संगीत रसना जबकि हर हर नीत पली सो करनी सो बत नवांते हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगा।

अष्टपदी। जब अकार एहु कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध तब वैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सो कह किसह व्यापत। जब अपन आप अपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसोत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नान करन हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंध मुक्त कहो किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सख्त कहो कित छाए। जब अप है आप अपनी जो तर तब कवन निडर कवन कत डर। अपन चलित आप करन हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कह कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। अपन आप ही अचर्जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो किस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तह किसह भूख कवन तृप्ताव। करन करावन करन हार नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला अप है परबीन तह वेद कतिव कहा कूचीन। जब अपन आप उड़तारा तो सगन अप सगन कहाँ बिचारा। जह अपन ऊंच अपन आप मेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जन हो आप। जह अचल अचेद अपेद समाया उहां किसह व्यापत माया। आपस को अप है आदेश त्रिह गुण का नाही परवेश। जह कह एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पति हरा तह कौन कथ है कौन सुन न हरा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा। जह आप रचे प्रपंच अकार तेह गुण महकीनों विस्तार। पापुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान। अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक है। जह अभिगत भगत है आप जह पसर पासार संत प्रताप। दुहु पाक का पह तनि उनकी शोभा अनु बनी। आप है कोत कर अनचोज आप है रस पुग निर्जोग। जिस पावे तिस अपन ना लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार अथह अगंत अतुल ज्यो बुलाव हो त्यों नानक दास बोला। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी। आप कथ आप सुन हार आप हेक आप विस्तार। जा तिस पावै ता श्रेष्ठ उपाय अपने पाण लय समाये। तुम ते पिन नहीं किश होए अपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता। जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख तिस कोय न मारे सो मुआ। जिस मनोह बिसारे तिस तज अवर का।

को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत के पाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहे हो ब्याप प्रतपाल जीअन बहु पात जो जो रचियो सुत सहत आत जिस पावे तिस लय मिलाए भगत कर हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हरे कहनाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुकुम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं बीचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर अंधन पूजह गुर के पैर ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले नानक हर प्रभाव पह मेले साध संग मिलकर हो आनंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो बीचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाव प्राण तरण का है सुहाव आठ पहर प्रभ पे खो नेरा मिटा ज्ञान बिन सदेरा सुन उपदेश हृदय बसावहु मन इच्छे नानक फल पावहु हालत पलत दोयले हो सवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा ते साच परिख्या मन तन नाम जपोह लेवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माही नानक बहर ना बह जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरा राखन हार त्याहे निरपौ जपै सगल पहो मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन बेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पर प्रधान जिस मन बसस होत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान।

मन पर गष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कस्कट माय अनिक रंग नाना दृष्टा है। नौ निदमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचर्ज विस्माद। तिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवान तरन माया आकाश दयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बसन तिर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मह देख ससियर सूर नखेत्र मह एक वाणी प्रभ की सबको बोला आप अडोल न कब हूं डोला। सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह हो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ वचन सब व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी हिरत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान कर्ण करा वनहार प्रभ जान। अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत तिस प्रवते सगली उत्पत तिस पावैता करे विस्तार तिस पावैता एक अंकार अनिकला लखी न जाए जिस पावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वरतौरा सर्वनैन आप देखनहारा सगल समग्री जा का तना अपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया। आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त हो रहा जो किस कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए। इसते होए सो नाही बुरा ओरै कहो किने कछ करा आप भला करतूत अत नीकी आपे जान अपने जी की। आप साज धारी सब साज ओत पोत अपन संग राज ता की गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाना है तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का है सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरह गोविंद, मन अंतर की उतरा चिंद, आस अनित्य त्याग हो तरंग, संत जना की तूर मान मंग, आप छोड़ बेंती करहो, साथ संग अगन सागर तरहो, हर तन के पहर ले हो पंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल हे रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तर लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकर मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजा, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजा, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रस

राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभे खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सबते ऊच पाए अस्थान, बहर न होवै आवन जान। हर तन खाट चले जन सो।

ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगाश सबके मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए परीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण

नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नाम शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादन विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो यास यासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगीय कामे कचरी छंद अज अल अभय अभय अभू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेक अपेक अनाम अकाम अगाह अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपर्मंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमोसल प्रणामे समोसल प्रणासे अगुंजल अनामे समोसल निवासे निरकाम विभूते समोसल स्वरूपे कुकर्मुक प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करिमुल कुनंदा समोसल निवासी अजाय विभूते गजाय गनीमी हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख भरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा उते करति बन एक रति के माते मतंग जरे जर संग उतंग उसुरंग सु अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारे पुजान के पूप बली बदन्याव शीसना जात बिचारे ते पह तो कहाँ पह पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फरैसा उदेश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेक पवान के पूपत कौन गनाने जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सदारे तीर्थ नान दयादम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है पौनहार जति जत्तार सबै सुविचार हजार क देख है श्री भगवान पजे बिन भूपते करति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलांगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हलैना हलैंगे और अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान बलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बन त्याग जहान निदान चलाएंगे धीर पार बड़े बड़े आरे विचार सार की तार पछैया तोर्त देश मलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नुहार चुबातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक दवैया दानव देव निध निसाचर पूत पिख पवान जपाएंगे जीव जिता जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन कैब पुंज खपाएंगे सात समूह प्रसन्न पर जग सत्र सव अवलोक चपाएंगे मानव इंद्र गजन निराधव जौन त्रिलोक राज करेंगे कूट स्नान गजायद गदान अनेक स्वयंवर साज बराएंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पतंत फसाजम फास फ्राएंगे जे नर श्रीपद के प्रसें पग हे नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो लोचन मुंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरो ले सात समुद्र लोग गए ऊपर लोग गवायो बास की ओ विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो काहू ल पाहन पूज तरो सिर काहू लिंग गरे लटकायो काहू लखे वर वाची समय काहू पछा को शीस नवायो कुबतान को पूजत है पस को मुरतान को पूजन तायो कूर किरिया उर जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर किरिया उर जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी।

मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूर, अखी सूतक वेखना पर त्रय पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पे लाइत बारी खाहे, नानक हंसा आदमी।

गुरु ग्रीवने आज अंतर्जामी सतगुरु जी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जाग दी जोत हाजर हाजर कल युग दे बोहित आप जी दर की हाजरी पढ़दे हां बेअंत गुरसिख माई भाई वालों आप जी दे बाण दे सत्कार जो बेअंत माया पिता गुरु देव जी सारन सिखी दान प्रसाद दान चन्ना कुन्ना प्यार बख्शना खजाने परपुर कने सो आओ गुरु प्यारे सत्संग जो कीर्तन की इनिक सेवा प्रवान करनी हुई भुलना चुका की खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरवण करिए अज दे श्री मुखवाक के विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार योग्ञानी जसबीर सिंह जी उन्होंने पासो अज दे श्री मुखवाक के विचार सरवण करिए दस रूप फतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

चरण कमल रख मन माही, ताके शरण प्रयो नानक दास, जाते ऊपर को नहीं। वाहे गुरु साहिब जी तनसरी महला चौथा, हम अंदुले अंध बिखे बिखरते, क्यों चालहें गुर चली, सत गुर दया करे सुख दाता।

जो गुर कह सोई पल मानो, हर हर कथा निरली रहाओ। हर के संत सुनो जन भाई, गुर शिव हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज की कली।

जिन हर जपिया से हर होए हर मिले अकेल केला ली हर हर जपन जप लोच लोचनी

पद हर मिलो हम साध जना पगरली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग सत्संग जी, आप जी वडभागी हो। हर रोज दी तरह अमृत वेले तो शाहे शहनशाह शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पाक पवित्र हजूरी विच हाजरियां भरदियां पंथ प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनिये हजूरी रागी जथे पासों संपूर्ण श्री आसा दीवार दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवन कीता। शब्द कीर्तन उपरंत जो पावन पवित्र वचना दा पाठ आप जी ने सरवन कीता, आज अमृत वेले तक ते प्रकाशमान होन वक्त धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कृपा कीती, जो गुरुदेव ने हुक्म बख्शे द मूल पाठ आप जी ने सरवन कीता। ए पाक बचन धन गुरु रामदास सचे पातशाह दे उच्चारण कीते राग तनासरी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 667 अते 68 ते सुभायमान हन। आओ गुरु प्यारे कुछ समय लई जिथे अज दे हुकम दी विचार करिए उथे अज सारे संसार जगत नू तारन वाले ठारन वाले एक उस मार्ग दे पांधी बनाउन वाले जेड़ा मार्ग सिद्धा निरंकार तक जांदा है परमेश्वर विच अवेद करदा है। धन गुरु नानक सचे पातशाह दा अज

0: रह जाओ। गुरु दी शरण पै के करना की है, सतगुर से खर्च हर बंदो। गुरु दे शरणा विच आके, गुरु शरण विच पै के परमात्मा दे नाम दी खर्ची पल्ले बन लो। ते ए खर्च पल्ले बनन दे लई टाल मटोले ना करने, मत जानो मता जानो के ये काम कल कर लांगे, अज कर लांगे, ए कलू ए भाई, नहीं नहीं नहीं, टाल मटोले ना करो। तत्काल भज के गुरु दी शरण पवो छेती, अते गुरु दे चरणा दा सेवन करके, निरंकार दा चिंतन करके, रब दे नाम दी खर्ची पल्ले बन लो। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। रब दे प्यारे जड़े ने ना, वो रब दे नाम नू जपन ले यतनशील आंदे, जपना चाहते ने रब नू दम दम नल हर सा नल। ते जिन्हां दी एकांखा इच्छा बन जांदी गुरु के प्यारे, ओ रब दे प्यारे जिहड़े ने चलें हर नल ली, रब दी रजा विच उहनां नू चलना आ जांदा, चलदे ने फिर। जिन हर जपिया, जिन्हे परमात्मा दा गुरु उपदेश राही नाम जपिया, से हर होए, ओ रब दा ही रूप हो गए। हर मिले केल के लाली, सारी दुनिया दे केल चौज चौज तमाशे करन वाला पार ब्रह्म केल के लाली उनानो प्रभु मिल जाता। हर हर जपन जप लो चलो चानी, रब नू जपन ले उना दे अंदर कंखा इच्छा तमन्ना बन दी है। फिर अरदास कर देने के, हे बनवाली प्रभु कृपा कर, ताके असी इस तांग दे मुताबक तेरा नाम, तेरी सिफतो सलाह, तेरा नाम जप सकिए। आखरी बचन, जिस विच धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह कृपा करदे हन, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जन्ना पग रली। दास नानक बेनती करदा के हे प्रभु, मैनू अपनी संगत विच मेल लै, मैनू अपनी संगत विच मिला लै, ते तेरी संगत विच मिलके मैं की चाहना, मेरी मंग की है, मेरी कांखा इच्छा की है। धन गुरु रामदास महाराज बचन कर दे नहीं कि मेरी इच्छा ये है कि हम असी साध जना पग रली, इस दर ते संगत विच जुड़न वाले तेरे जड़े प्यारे ने प्रेमी हन, उना दे चरना दी तूट। नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै। संगत विच आके असी यही कर दे, जप दे, जपों दे, जेड़े जपदे ने जपौंदे ने करते नो, उना दे चरना दी धूड़ ही मंगी गई है। उना सेवकां दे चरना दी धूड़, वो भी संगत विच मिलके। जन नानक संगत साध हर मेलो, साध संगत विच मेल लो, ते मिला के मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैनू अपने साध जन भले पुरशां दे चरणा दी धूड़ मिलती रहे। मन विरतियां एकागर करके अज दे पावन हुक्म दी, ते बहुत ही संखेप धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे ज्योति ज्योत पुरब संबंधी विचारां सरवण कीतियां। भुलां चुकां दी दास नूं खिमा कर देनी। राम कली महला तीजा, आनंद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार, परियां शब्द गावणे आईयां। शब्दो तंगावो हरी केरा, मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दिया ए वड़े आईया, कह नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुहागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संतापी उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आपर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लगे वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवितो सतगुर रहे अपर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी, तुम मात पिता हम बारक

भाव नह तृप्तानु राज जोबन धन बहुर बहुर फिरताया सुख पाया तृष्णा सब भुजी है शांत पाई गुण गाया।

परमेश्वर सिमरत पाई है मान रहाओ आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतित पुनीत हो।

प्रभु के सिमरत दुख जाए रहाओ। ईत ऊत कहा लुभाव है एक स्यों मन लाए, महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय, सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए। कान

कोट जन्म दुख कर पायो, सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा, तन उह प्रीत चरण संग लागी, कोट जाप ताप सुख पाए, आए मिले पूरन बड़ भागी। रहाओ वोहे अनाथ दास जन तेरा, अवर ऊट सगली मोह त्यागी। भोर भरम काटे प्रभ सिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाहु अत बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूरन रतनागी। नानक जाचक हर हर नाम मांगै, मस्तक आन धरियो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा, कुचिल कठोर।

विषम विषम विषम ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, कहु नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे, कानड़ा महल्ला पंजवा। ना जानी संतन प्रभ बिन्यान, ऊंच नीच सब पेख समानो, मुख बकनो मन मान रहाओ, कट कट पूर रहे सुख सागर, पै भंजन मेरे प्राण, मने प्रगास भयो।

शरण तुम्हारी आहिउ रहाउ। जन्म जन्म के महापराक्षत दर्शन भेट मिटायो, भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाद समायो, कहुन कहे।

रसना हर हर भोजन तृपतानी, अखियन काओ संतोख प्रभ दर्शन, रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दोख सगल मल हरसन, पावन धावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूरन अविनाशी, आन उपाव थक

कोहकत कपट खपट खल खरजत गरजत, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनिक बरिया रहाओ। अहंग मत अन रत कुमित हित, प्रीतम पेखत प्रमत लाख गरिया। अनित व्यवहार अचार विदहीनत, मम मद मात कोप जरिया। करुण कृपाल गोपाल दीन बंध, नानक उधार।

सो पावे जिस लिखत ले रह रहाओ सेवो साध संत चरने रह बांचो धूर पवित्र करे रह अड़सठ मज्जन मैल कटे रह सास साज त्याव हूं।

ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ आस प्या सफल मूरत उमग उमग ही ओ तरसना दीन लीन प्यास मी संतना।

स्वामी उदरते हर त्याय रहाओ। सहसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध, विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आ।

रहाओ। कनिक मंदर पाठ सेज सखी, बोहे नाहे इन स्यूतात, मुक्त लाल अनिक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन, सखी प्रैसंग सूख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहंग तोरो मुख जोरो, गुरगुर करत मन लोरो, प्रै प्रीत प्यारो मोरो। रहाओ।

हर गुण निते सुख मोर। ईत ऊत नाम पूरन निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक बिन सेओ दुख।

जात सदा सदा सदा सदा काल है। मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनहु रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला।

माया पटल पटल है पारी, कर घूमन घेर कुलावै गो। पाप विकार मनूर सब पारे, बिख दुत्तर तरयो न जावै गो। भयो बैराग पौ बैराग, भया है बोहित गुर खेवट।

लग शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर

चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गो जिहवा एक होए लख कोटी लख कोटि कोट ते आवै गो रहाओ।

ज्यों सत संगत तरियो जुलाहू, संत जना मन भावै गू। खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ ते आवै गू। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जना वै गू। सासन सास सास बल पाई है, निःसासन नाम।

मैं सतगुर भस्म लगावै गू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दतार जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है, जो निता प्रति समुची मानवता के भले वास्ते पावन स्थाना ते श्री सहज पाठ की लड़ी चल रही है। उस तरतीब विच अज आपां ने सतगुरां दी अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण कीते हन। संगतां ने घरां विच बैठ के नाल कीते हन। गुरु कृपा करे सभनां दी हाजरी दर प्रवान कर लैण। सभनां नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला। सतगुरु जी बख्शिश करके निवाजन, गाव्या सुनिया सतगुरु जी थाएं पाउण। अगाध बोध बाणी नूं पढ़दिआं बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं हन। आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने बख्श लैणगे। आओ विशेष कीर्तन हाजरी अज होवेगी 10 बजे तो लैके 11 बजे तक, क्योंकि अज साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस है। अज दे दिहाड़े धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी 1539 ईस्वी नूं श्री करतारपुर साहब जी की पावन पवित्र धरती से, जो गुरु साहब जी ने अपने जीवन हयाती के अखीरले समय श्री करतारपुर साहब बैठ करके आप हथी किरत की, बेअंत संगतां नूं जोड़िया, जिस बाबत भाई गुरदास जी ने वचन किए हैं कि दतार पिता महाराज ने पैर संसारी कपड़े भाव संसार की प्रवृत्ति करन वाली बिरती नूं धारण करके श्री करतारपुर साहब बेअंत समां दतार पिता महाराज ने नाम तो टुटे हुए, परमेश्वर तो टुटे हुए लोगों नूं अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जोड़िया। इत्थे ही साहिब सतगुरु धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दतार पिता जी पहली वारी सतगुरु जी नूं मिलन वास्ते आए 1532 ईस्वी दे अंदर, ते उस तों बाद गुरदेव पिता महाराज जी दे चरणां दे भौरे ही बन गए। लगातार 7 साल सतगुरां दे दर घर की सेवा कीती। 1539 ईस्वी नूं साहिब सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने अपना शारीरिक चोला जदों त्यागया, उस तों पहलां समुची संगत नूं श्री करतारपुर साहिब विच संबोधन कीता सी कि मेरा वासा ना मड़ी ना गोर गुरु अंगद के हिरदय माहे। कि मेरे वासे नूं इह नहीं समझना भी किसी मड़ी नूं मेरी मड़ी समझ के पूजन लग जाना है, कोई मेरी गोर बना देनी है, मेरी पूजा शब्द की जे पूजा करनी है ते अज तो बाद मेरा वासा गुरु अंगद के हिरदय माहे, भाव गुरु अंगद का हिरदा मेरा हिरदा होएगा। सो अज तो बाद श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं अपना गुरु जानना है। सतगुरां ने आप गुरियाई का ताज बख्शिश किया, गुरियाई दी, आप परिक्रमा करके सतगुरां ने नतमस्तक होए ते सारी करतारपुर साहब की संगत सतगुरां दे चरणां विच नतमस्तक हुई। ये गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जगत संसार विच चल रही बहुत लंबे समय तो जिहड़ी फिरती सी कि जिहड़ा गुरु है वह गुरु ही रहिंदा है, चेला चेला रहिंदा है, कदी गुरु ने अपने चेले के चरणों विच चरणों ते हाथ नहीं लाया सी, पर गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के चरणों ते आप सतगुरां ने मत्था टेकिया। तां ਭਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

अरे आप खेले बहरंगी जियो एक ना भोग पगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नंग नंगी जियो आपे जगत उपाए दा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगत भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराए दा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रव रहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेख आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यो वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर सबदी हर प्रभ गाजे जियो आपे शरण पवाए दा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो बड़ भागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्धि काजे जियो गौड़ी महला गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नाम में हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा

फिर पहड़ न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मिल हो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर सब दी पाई हर प्रीतम राओ जियो बडभागी जप नाओ जियो मेरे मन तन बडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेल हो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा परगासा जियो जन नानक पुरड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो हर पाए पायड़ा मन जीवा जियो मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बिठो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नाम मैं नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहो लगाई जियो गुर सरदा पूरी अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजमा

होत मेरे पाई, क्यों पाये हर राम सहाई। रहाओ कुशल नगर है मेरी सब माया, उच्चे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख बिगासा, लश्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हो मैं कह के फासा, राज कमावे दह दिस सारी, माणे रंग भोग बहनारी, जो नरपत सुपने ते खारी। एक कुशल मुँह को सत गुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या भगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया। इन विद कुशल होत मेरे पाई, यूं पाइये हर राम सहाई। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वार री महला पंजमा, क्यों पर परमिये भ्रम किसका होई, जा जल थल महियल रविया सोई। गुरमुख उबरे मन मुख पत खोई, जिस राखै आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा। रहाओ सब मैं वरतै एक अनंता, ता तू सुख सो होए अचिंता, ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता, मन मुख मुवे जन दूजी प्यासा, वह जोनी पवे तुर तिरत लिख्यासा। जैसा बीज है तैसा खासा, देख दर्स मन पया विगासा, सब नदरी आया ब्रह्म परगासा, जन नानक की हर पूरन आसा। गौड़ी ग्वार रे महला पंजमा, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। रहाओ कई जन्म सैल सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, लख चौरासी जोन फरमाया, साध संग पयो जन्म प्राप्त, कर सेवा पज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरह दरगह परवान, जो किछ होया

कह नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी ग्वार री महला पंजमा, कर्म पूम मह बोहो नाम। पूरन हुए तुम्हारा काम, फल पाव है मिटे जम त्रास। नित गाव है हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उरतार, सीगर कार्ज लिहो सवार। रहाओ अपने प्रभ से हो सावधान,

रहाओ। गुरु का वचन अटल अछेद, गुर के वचन कटे प्रम भेद। गुर का वचन कतहु ना जाए, गुर का वचन हर के गुण गाए। गुर का वचन जिया के कै साथ, गुर का वचन अनाथ को नाथ। गुर का वचन नरक ना पवे, गुर का वचन रसना अमृत रवे। गुर का वचन प्रगट संसार, गुर का वचन न आवे हार। जिस जन होए आप कृपाल, नानक

रतन गर्भ में राख्या जिन कर जतन जिन दीनी सो बाबड़ियाई तिस प्रभ को आठ पहर तिहाई रम्या रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम त्यावो रहाओ जिन कीता मूड ते बत्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस पर साध नवै निद पाई सो प्रभ मानते बिसरत नाही जिन दिया न थावे कौथान।

अमृत बिख खाटी कह नानक इस्ते किछ नाही राखन हारे कौसालाही गौड़ी ग्वारी महला पंजमा तिसकी।

रंग कर बाहर तेरे सद संग रहाओ तिसकी टेक मने मह मने मह राख गुर का शब्द अमृत रस चाख अवर जतन कह।

पावनहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुर उपदेश मनै महले हो, जा को राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन बड़ पागी, गौड़ी ग्वार रि महला पांजमा।

देख गए सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूटन काहे को जाहे प्रभ अपने जब पै दयाल

गौरी ग्वारी महला पांचवा अगले मुए से पाछे परे जो उभरे से बंद लक खरे जह तंदे में उए लपटाए तिनते दुगन डिड़ी उनमाए ओ बेला कछ चीत न आवे बिंस जाए ताहू लपटावे रहाओ आशा बंदी मूरख देहे काम क्रोध लपट्यो असने है सर ऊपर ठाडो धर्म

अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख बखाने, जित जित लाभ है तित तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना।

पांजमा अनेक जतन नहीं होत छुटारा। बहुत स्याणप आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत

जो बोहत पै सागर मा है, अंधकार दीपक दीपा है, अगन सीत का लाहे सदुख, नाम जपत

डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत, नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप दिवावे, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द तह नानक नसे। गौड़ी गौड़ी ग्वारी महला पंजमा, बहुत दर्ब कर मन न अगाना, अनेक रूप देख नहा पतियाना, उत्तर कलत्तर उज्जो जान मेरी, ओह बिनसे ओए पसमै तेरी, बिन हर भजन देखो बिललाते, त्रिग तन माया संगराते, रहाओ जो बिगारी कैसर दीजे दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम, जो सुपने हुए बैसत राजा, नेत्र पसारे ता निरारथ काजा, जो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु न पड़े, जिसका राज तिसे का सपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, आप बिनाहे आप करे रास, नानक प्रभु।

साध संग कै नाही नेर लख चौरासी प्रमत प्रमत्ता फेर एक कै जाल फहाए पंखी रस रस भोग

ते बंधन छुटे तो कृपा ते हमें टूटे। तुम लाभ हो तो लाग है सेव, हम ते कछु न होवे देव। रहाओ

कियो उन वर्तन तृप्त अकावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे।

अवर न जाने बिन निरंकारी हरख सोग दो हूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान धरते संतन की महिमा कवन बखान्यो अगाध बोध तिच मित नहीं जान्यो पार ब्रह्म मोहे कृपा कीजे दूर संतन की नानक दीजे गौड़ी।

मानतानी अंतर तुही त्याया, मर्म तुम्हारा गुरु ते पाया। सतगुरु ते दृढ़िया इक एक, नानक दास हर हर हर टेक। गौड़ी ग्वारी महला पंजमा, व्यापत हरख सोग विस्थार। व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत तन निर्तन पेख सोबा। मूल व्याधि व्यापस लोबा, माया व्यापत बहु परकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाओ। व्यापत है बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त कोड़े अरवस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत पूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल सीगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत गिरसत व्यापत उदासा। आचार विहार व्यापत इह जात।

इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मूसन हार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई। दर्ब सियाणप न ओए रहते, साध संग ओए।

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मह इह हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल त्यावो।

दुख दर्द बिन से पै परम, आवण जान रखे कर कर्म, देख बोले सुने सब आप, सदा संगता को मन जाप, संत प्रसाद

नानक का प्रभु अपर अपारा गौड़ी ग्वारे री महल्ला पंजमा जिस मन वसे तुरे तरे जन सोए जाते कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना व्यापे

जगतपाल अगम अगोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुरमंता जाति सेवा सर्व निदान

कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निदान हर अलख स्वामी, जिया जंत तेरी सरनाई, नानक नाम मिले वडियाई। गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पांजमा, जिया जुगत

जागा अमृत गुण उच्चरै प्रभ वाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सहज सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया वहा पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पहुँच पुन पुनः चार हर हर नाम जी प्राण।

हर तन खट्यो जाका नहीं सुमार, जिसे प्राप्त तिस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे। गौड़ी द्वार महला पंजमा।

लिख लेखण कागद मसवाणी राम नाम हर अमृत बाणी रहाओ एह कारज तेरे जाहे विकार सिमरत राम नाही जम मार धर्म राय के दूत न जो है माया मगन न कछु है मोह उधर आप तरह संसार राम नाम जप एकंकार आप कमाऊ अवरा उपदेश।

पांचमा चौपदे दो पदे एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना। कहो गुसाई मिल के हे, जो बिबरजत तिस स्यो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे नाराती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीता

पितर आव्य पितर पुग है पोग जल न पाय राम स्नेही कृत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल पा।

रतन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडार अखट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, तोट न आवे बद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए,

असुर अपने को बलिहारे छोड़ न जाई सर पर तारे रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई न कही जाए छोड़ मान हर चरण गही जाए कहो नानक गुरु मंत्र।

सोलागी, दुख दर्द प्रमता का पागी रहाओ। जा को रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो। जा का कहया दर्गह चलै, सो किस को नदर ले आवे तले। जा का सब

जाके हृदय दियो गुरनामा कह नानक ताके सगल निदाना। कौड़ी महला पंजमा अगम रूप का मन में थाना गुर प्रसाद किने विरले जाना। सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसले पुंचा रहाओ अनहत बाणी थाने।

कवन गुण जो तुझ लै गावो, कवन बोल पार भ्रमरी जावो रहाओ। कवन सो पूजा तेरी कराओ, कवन सो विद जत पव जल तरो, कवन तप जत तपिया होए, कवन सो नाम हो मैं मल खोए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल।

आपन नाम सतगुर ते पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा।

पी मर न जाही जिना बिसरत राम। नाम बिहून जीवन कौन काम रहाओ। खात पीत खेल

करण हार सद बसै हदूरा, कह नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजमा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद।

तोरसन आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय लय संचा। कह नानक जाका पूरा कर्म, तिस पेटे साधु के चरण। गौड़ी महल्ला।

रहाओ नाम भगत कै सुख अस्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सा

रहाओ। हर कीर्तन सुनाए हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल करत जन सो है, ताको माया अगन न पोहे। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजमा, छाड़ स्याणप बहुचित राई।

पंजमा राख लिया गुरु पूरे आप, मन मुख को लागो संताप। गुरु गुरु जप मीत हमारे, मुख उज्जल हो है दरबारे। रहाओ गुर के चरण हृदय बसाए,

पांजमा अनेक रसा खाए जैसे ढोर मुह की जेवरी बाद्यो चोर मृतक देह साध संग बिहूना आवत जात जोनी दुख खीना रहाओ।

प्रेत बुढ़त जात पूरे गुर काडे जन्म जन्म के टूटे गाडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस पेट ते

सास सास प्रभ मन है समाले, सोतन संचो जो चाले नाले, तिसे परापत जिस मस्तक पाग, कहो नानक ताकी चरणी लाग। गौड़ी महल्ला पांजमा, सुके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट सांच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव से।

सफल मूरत सफल ओ करी, जित रसना उचरै हर हरि। सफल ओहो माथा संत नमस्कारस, चरण पुनीत चलै हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म।

सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाहीं अन कोय। मारे राखे एको सोए रहाओ, गुर के चरण हृदय उरतार। अगन सागर जप उतर है पार, गुर मूरत स्यो लाए ध्यान।

जन राम रसन बखानी रहाओ। एक सबन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन में लेख। रब रहा सर बत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पांजमा पै मैं रचियो, सब संसारा संसारा तिस पो नाही जिस नाम अधारा। पो न व्याप तेरी शरणा, ज्योत दावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में।

पाव चरण कमल हृदय उर तारी मन तन धन गुर प्राण अधारी सफल जन्म होवे परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान संत तूर पाये बड़ पागी नानक गुर पेट तहर स्यो लिवलागी गौड़ी महला पांजमा करे दोह कर्म दिखावे होर राम की दरगह बादा चोर राम रमे सोई रामाणा जल थल मैयल एक समाणा रहाओ अंतर बिख मुख अमृत।

से राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधे सारहाओ, साध सांग कछु पौ न प्राती, गुण गोपाल गाई है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जासती है जननीत। गौड़ी महल्ला।

सैन बाजे सोजन सूरा रहाओ, जाको पै कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई, सुख सहज शांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, राम रास साध संग खाटी, कह नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजमा, हर सिमरत सब मिठे कलेस, चरण कमल मन मह परवेश, उचरो राम नाम लखबारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ, सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, काम क्रोध लोभ मद।

दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे

मंगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथारित माहे बसाई मन बांचत सगले फल पाई।

सदा मुकर पाए, प्रसनो जो है दूत धर्म राय, तिस्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं भौजूना रहाओ, साकत की ऐसी है रीत, जो किछ करे सगल विपरीत, जो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकर मनहु बिसारिया, बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सुख

पांजमा कोट बिघन हिरेखन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण तास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण।

सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पांजमा, आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभ लय निवारे। ऐसा हर रस रमो

तू मेरा बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाओ सबे गला जातियां सुन के चुपकिया कदी सुरत ना लथिया माया मोहड़िया बेबुजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई सो मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा एक सुदोहू चौह किया गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाय रसड़िया का बिरली जाए बुठी भगत सचे दर सोह दे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेसरे जन नानक दिन बल जात गौड़ी महला पंजवा माज दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आठ पहर आरा दिए पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ जित कट बसे पार ब्रह्म सोई सहावा थाओ जम कंकर नेड़ ना आवी रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओट गए रीवी जीवना ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकर अगम अगाध पाइकर पाल गुसाइया नठे

जन्म अमोलक पायो व्यर्था कहा गवायो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन तुहार तुम आओ, गज को त्रास मिटो जैसे मृत तुम काहे बिसरायो। ताज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ है गुरमुख होय तुम पावो। कौड़ी मान लानो मां कोई माई भूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मकसन कर्म निखन हर के गुण गावे रहो। दुर्लभ दे पाई मानस की व्यर्था जन्म सरावे, माया मोह संकट बनता सोर उपजावे। अंतरबाद सदा संग प्रप्त स्यो ने ना लावे, नानक मुक्त है तुम माने जय कट राम समावे। कौड़ी महला नौवा साधो राम शरण बिसरामा, वेद प्राण पढ़ कोए कुन सिमरे हर को नामा राव। लोभ बो माया ममता फन ओ बिखन की सेवा, हर शोक पर से जय नायन सो मूरत है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख है सबको, कंचन पैसा उस्त तनिंदा ए समझा के, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख के बादे जय नाहन तिम से जान ज्ञानी, नानक मुक्त है तुम मानो ए विद को जो प्राणी। कौड़ी महला नौवा मन रे कहाँ पे हो है बौरा, एन से औद कठे नहीं जाने प्यो लोभ संग हो रा राओ। जो तन तो अपने कर माने और सुंद गृह नारी, इनमें किछ तेर हो रे नाहिन देखो सोच विचारी। रतन जन्म अपनो तय हार्यो, गोविंद गत नहीं जानी, निमिख न लीन पे हो चरणन से व्यर्था और सरानी। कोह नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण तहा तुम पर रे रहो। वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही ओ मैं धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कम सल सब हर रे। मानस दे बहर ना पावे, कुछ अपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाय करुणा

मन फूलो माया कर जाए, काम विरोध रहे न ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए, है वर गैवर कांचन सुतनारी, ओ चिंता पिड़ चले हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो सची पए विकार, हरख सोग उबे दरबार, सुख सहजे जबर दे मरार, नजर करे ता मेल मलाए, गुण सग्राहे औगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूढ़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लखयास, मन चंचल तावत मन तावे, साचे सूचे मेल न पावे, नानक गुरमुख हर गुण गावे, गौड़ी गुआरे दी महला पहला, होमे करतै न सकोए, मनमत झूठी सच्चा सोए, सगल भगूती पावे दोए, सो कमावे तुर लिख्या होए,

बल राजा माया अहंकारी, जन करे वो भार अफारी, बिन गुर पूछे जाय प्यारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंतर पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे।

गर्भ गया बिन सतगुर हेत सह सुभाबंद कीट महासा हर नैन खे विगासा देव सिंगारे बिन भगत बयासा चंगा संसारे रक्त बीज काल नेम बदारे देव सिंगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत सिंगारे गुरमुख साज भगत निस्तारे बूढ़ा दर्दो जन पत खोई राम न जानिया करता होई जन को दुख पचे दुख होई जन्मे जे गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम फुलानिया एक दल भूले बार पुछतानिया कंस के चंडाउर न कोई राम न चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश न राखे कोई बिन गुर न मेटिया जाए गुरमत धर्म धी सह नाए नानक नाम मिले गुण गाए।

महाराज जी की पावन हजूरी विच दोने बच्चे शुभायमान सतगुरु जी हजूरी विच सा चुके हैं जी। सो परिवार वालों हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मंग शंदा तू सब कुछ मेरे सौंपे आ जा तेरा बंदा